0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਸ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में PM फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।

0: इस उपलब्धि के साथ ही एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथेन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति संगीत का प्रोग्राम आराधना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना,

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ICC ਵੂਮੈਨ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੜ ਰੂਪਾਂਤਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰ 10 ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਰਵੀਵਾਸਤਰੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਸੁਧੀਰ ਪਾਂਡੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ आन् AIR इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रियसभां सम्बोधयिष्यति। भारतीयप्रवासिसदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोष कैमन इत्यत्र राष्ट्रियदिवससमारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीयरक्षाबलानाम् एकेन दलेन सह भारतीयनौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य 3-दिवसीययात्रायां विक्टोरियानगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना

0: संदर्भ: लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतुविभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। ते आओ हुण तक दे मुख समाचारां वल एक नज़र मारते हैं। न्यूज़ हेडलाइन दे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण ने कहा है कि MSME खेतर देश की आर्थिकता नू मजबूत करने च महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी नू अगले 2 साल विच देश भर के 500 शहरां ते कस्बियां विच फैलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सकत्तर चंपत राय अते ट्रस्टी अनिल मिश्रा दे इस्तीफिया नू अधिकारिक तौर ते स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अज अते कल नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय देहाती विकास सम्मेलन 2026 की प्रधानगी करेंगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों युद्ध नशिया विरुद्ध मुहिम दे अगले पड़ा सूरमा मुहिम की शुरुआत। नशा छड चुके नौजवान होरना लोकां नूं नशा छड्डन च करनगे मदद। पंजाब दे राज्यपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने नशियां दी दुरवरतों अते गैर कानूनी तस्करी नूं खत्म करन लई इक सांझी समाजिक लहर दा सद्दा दित्ता है। पंजाब सरकार वालों अज सरकारी कॉलेज स्टेडियम गुरदासपुर विखे कराए जा रहे एक शाम भगवान शिव दे नाम प्रोग्राम च मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी भगवान शिव दा गुणगान करनगे। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप विच भारत ने कजाकिस्तान नू 2-0 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल विच अपनी थां पक्की कर ली है। ये सन हुण तक दे मुख समाचार। तुसीं जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल और समा हो गया है मॉर्निंग इनफॉर्मेटिव इनफॉर्मेशन अते तुहाडे एंटरटेनमेंट दे प्रोग्राम सोनी सवेर दा। ते आओ शुरू करदे हां प्रोग्राम सोनी सवेर।

उठो कि देखो कैसा हसीन नज़ारा है, हवाओं में बहता सुखद ये इशारा है, नई सुबह लेकर आई है नई सी उम्मीद, आज का हर पल बस आपका और हमारा है। जी हाँ श्रोतियो, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आकाशवाणी जलंधर ते तुहाडा दोस्त गौरव है तुहाडे नाल। सो एक बार फिर आकाशवाणी जलंधर तुहाडी और मेरी इतना दी सांझ पै गई है, और ये जिहड़ी सांझ है ना, ये वो सांझ है जिहड़े दिल नू दिल दी राह करदी है और तुहानू रेडियो दे नाल मलांदी है। और जिन्होंने भी अजे तक रेडियो ऑन नहीं किया, रेडियो ऑन कर लो, क्योंकि ये आने वाले जेडे 58 मिनट है ना, तुहाडी जिंदगी दे सब तो वधिया 58 मिनट होने वाले ने। प्यारे श्रोताओ, चिड़िया दी चहचहाट, ठंडी ठंडी ताज़ा हवा, ते एक खूबसूरत दिन

जी दोस्तों, और गल अगर सूरज देवता की कीती जावे तां अजकल तां उन्हां दा जिहड़ा प्रचंड रूप है ना, वो वेखण नूं मिलदा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, ये तां कोई इदां दी दसण वाली गल ही नहीं जिहड़ी तुहानूं पता नहीं। तो लेकिन गर्मी दे विच तुसीं अक्सर देखते हो कि पुराने समें दे विच ना असीं पक्खियां झलदे सी या वृक्षां दे थल्ले जाके बहि जांदे सी, और अजकल जिहड़ा है असीं देखते हाँ कि एसी यानी कि एयर कंडीशनर, यदा बटन ऑन किया जाता है तो फिर ठंडी ठंडी जी हवा है ना वो साढ़े तक पहुँच जाती है। पर कितने तो सारू पता है कि ये जी एसी की काढ़ हुई सी ये सूँ ठंडक पहुँचाने वास्ते तो बिल्कुल नहीं हुई सी। हो गए ना हैरान है सुन के? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने अज असी एसी कहने मतलब गर्मी तो राहत पाने का एक आधुनिक यंत्र, असल दे विच साडे आराम लई बिल्कुल बनिया ही नहीं सी। इहदा आविष्कार करन दा जिहड़ा मकसद जिहड़ी वजह सी ना वो बहुत अलग सी। साल 1902 दे विच अमरीका दे एक शहर है ब्रुकलिन, ते उहदे अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस, जी हाँ जिहदे विच अखबारां छपदियां या किताबां छपदियां अक्सर, वो जिहड़ी प्रिंटिंग प्रेस है ना उहदे अंदर देखिया कि बहुत ज़्यादा नमी हो जाती सी, ते जिहदे नाल जिहड़ा कागज़ सी वो फैल जाता सी ते कदी कदी वो सिकुड़ भी जाता सी। इहदे कारण जिहड़ी उहदा रंगां दा अलाइनमेंट है जिहड़ा संयोजन है वो खराब हो जाता सी। बहुत लोकी बहुत परेशान सन कि कीता की जावे। ते फिर विलियस हैवीलैंड कैरियर, जी हाँ उत्थों दे जिहड़े संपादक सन उस समय दे, उन्होंने एक खोज कढ़ी कि उन्होंने वेख्या कि अगर ठंडी कॉइल्स के उपर हवा जिहड़ी है वो सुट्टी जाए ना तो नमी जिहड़ी है फटाफट उड़ जाती है। ते इस प्रक्रिया के दौरान नमी तो घट होंगी सी ते हवा भी ठंडी हो जाती सी। बस इसे ही सिद्धांत नूं अज एयर कंडीशन सिस्टम कहा जाता है, और यही एयर कंडीशन सिस्टम का मेन आधार है। ते इहदे ही आविष्कार के कारण कैरियर नूं आधुनिक एयर कंडीशन का जनक भी कहा जाता है। उस तो बाद उहदा जिहड़ा डिज़ाइन है उन्हें बाकी सारे जिन्हें भी उद्योग सी उन्हां दे विच एक क्रांति लिया दित्ती। आम लोगों की जिहड़ी जिंदगी है वह भी बदल गई। शुरुआत दे विच तां जिहड़ा एयर कंडीशनर सी ना इहदा जिहड़ा इस्तेमाल सी इहदी जिहड़ी वरतों सी इह फैक्ट्रियां दे विच क्वालिटी बनाउण लई हुंदी सी, पर हौली हौली ये लोगों के निजी आराम का एक साधन बन गया। 1920 दे दशक च न्यूयॉर्क जिहड़ा शहर सी उहदे जिहड़े सिनेमाघर सी, हाँ जिथे तुसीं अजकल फिल्मां देखण जांदे हो, उहदे विच एयर कंडीशनर लगाए गए। और गर्मियां दे दिनां विच लोग ना सिर्फ उत्थे ठंडी हवा का मज़ा लैंदे सी बल्कि सिनेमाघर दे विच बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए, और हौली हौली जिहड़ा एयर कंडीशनर है ना ये हर घर

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

जादू चलिया। विशाल सिर्फ धुनां बनांदे नहीं सन बल्कि ओह माइक दे पिछे खड़े रहिंदे सन। उन्हां दी कड़क दी आवाज़ और रॉक जिहड़ा सीधा दिल तो उतरदा। चाहे उन्हां दे धनते तान की गल करिए, स्वाग नाल स्वागत की गल करिए, शाम शानदार की गल करिए, या जीले जरा, इदां दे गाने कौन भुल सकदा। असीं पंजाब च बैठे हाँ तो विशाल ददलानी दा पंजाब दे सूफी म्यूजिक नाल गहरा लगाव भी रहा। उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब दे सूफी गाणियां तों प्रेरित होकर इश्क सूफियाना वर्गा कमाल दा एक गीत कढ़िया, उहदी धुन बनाई और एक बेहतरीन कंपोजर दे नाल नाल विशाल देश दे सब तो वड्डे रियालिटी शो दे जज भी रहे। और अज उन्हां दा जन्मदिन है ते उन्हां नूं असीं दिलों धन्नवाद भी करदे हां और मुबारकबाद भी दिंदे हां। ते आओ फिर उन्हां दा गाया एक गीत सुन लीए। इस तों वधिया जिहड़ी उन्हां नूं मुबारकबाद हो भी की सकदी है। और जदों उन्हां दी एंट्री हुंदी है ना तां गीत तां इदां दे ही चलदे ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: तां पैसे गवाओगे।
4: आरबीआई कहिंदा है
5: जानकार बनो सुचेत रहो।
6: जी हाँ, जानकार बनो और सचेत रहो। और हुण वेला हो गया तुहाडे नाल इजाजत लैण दा। फिर मिलांगे जल्दी ही इसे ही प्रोग्राम दे विच जिहदा नाम है सोनी सवेर। अपने दोस्त गौरव नूं हुंदे हो इजाजत। तुसीं जुड़े होए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल और स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक सवेर दे 8 बज रहे ने। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी ठीक 8 बजे तुसीं सुणोगे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 बजे खबरां पंजाब।

0: ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जांच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज

0: होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक-एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में दूसरे

0: के घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ, लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार

0: men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार ई आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सेशल्स दे राष्ट्रपति पैट्रिक हरमायनी नाल गल्लबात करनगे श्री मोदी सेशल्स दी राष्ट्रीय असैंबली नूं संबोधन भी करनगे प्रधानमंत्री अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकां नूं सारे जरूरी यात्रा दस्तावेजां तों बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा ना करन लिखिआ है अमरीकी फौज ने लगातार दूजे दिन कई ईरानी टिकाणियां ते हमले कीते ने ते भारत दे किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विच मर्दां दे सिंगल्स दे फाइनल विच पहुंच गए ने हुण खबरां विस्तार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सेशल्स से राष्ट्रपति पैट्रिक हरमायनी नाल गल्लबात करनगे दोवें नेता समुचे दुआले सहयोग का जायजा लैणगे अते आपसी हित दे खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दियां ते विचार वटांदरा करनगे प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स दी राष्ट्रीय असैंबली नूं संबोधन करनगे ते भारतीय प्रवासियां दे भाईचारे दे मैंबरां नाल वी गल्लबात करनगे बाद विच प्रधानमंत्री मोदी रोशे केमेन विखे राष्ट्रीय दिवस समारोह विच हिस्सा लैणगे मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भी भारतीय समुद्री फौज के दो समुद्री जहाजों के नाल जश्नां विच हिस्सा लेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य मेहमान वजो शामिल होने सेशल्स के तीन दिन का सरकारी दौरे ते ने यह दौरा भारत सेशल्स विचकार मजबूत ते स्थाई दोस्ती की पुष्टि करता है अते सारे खेतरां विच दवल्ले संबंधां नूं वधाउण लई दोवां देशां दे सांझी वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे यह हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 135वां एपीसोड होएगा मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी अते दूरदर्शन दे समुचे नेटवर्क आकाशवाणी खबरां दी वैबसाइट अते न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप ते प्रसारित किया जाएगा इस नूं AIR न्यूज़ DD न्यूज़ प्रधानमंत्री दे दफ्तर अते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे यूट्यूब चैनलों ते भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा आकाशवाणी हिंदी प्रसारण तो तुरंत बाद प्रोग्राम नूं खेतरी भाषावां विच भी प्रसारित करेगा केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई राज मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों विच सेहत संभाल विच अहम तरक्की की है अते हर नागरिक लई पहुंचयोग किफायती ते गुणवत्ता वाली सेहत संभाल नूं यकीनी बनाउंदे होए सर्वव्यापक सेहत कवरेज दे विशाल टीचे वल काम कर रहा है एक निजी मीडिया चैनल प्रोग्राम दे डॉक्टर दिवस सम्मेलन दे नौवें एडिशन विच बोलदियां श्रीमती पटेल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नूं दुनिया दे सब तो वड्डे सेहत बीमा प्रोग्रामां विचों एक वजों उजागर कीता जो करीब 62 करोड़ लोकां नूं कवर करदा है ते कहा कि यह परिवारां नूं माली सुरक्षा दे नाल नाल इलाज तक पहुंच करन विच मदद कर रहा है
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स
1: केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह जो कि गुजरात के 3 दिन दौरे ते ने आज शाम नूं गांधीनगर विच प्रधानमंत्री परिवार देखभाल ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट की अधिकारित शुरुआत करनगे इस नवी पहल का उद्देश परिवारां लई सेहत संभाल ट्रैकिंग अते भलाई पहुंच योग्यता नूं बेहतर बनाउणा है इस तों पहलां श्री शाह अहमदाबाद विच बूथ प्रधानां अते शक्ति केंद्र इंचार्जां लई एक विशेष चिंतन शिविर विच शामिल होणगे जिस दौरान उह जमीनी पद्धर दीआं रणनीतियां दी समीक्षा करनगे ते स्थानक पार्टी मैंबरां नाल गल्लबात करनगे रक्षा मंत्रालय ने मीडिया ते सोशल मीडिया विच फैल रहीआं इन्हां खबरां दा खंडन कीता है कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान 6 फौजियां दी शहादत दी हाल ही विच जनतक तौर ते पुष्टि कीती गई है ते दस्सिआ कि इह तथ्य गलत है

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तुम
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेज आए, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: तां पैसे गवाओगे। आरबीआई कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸੀਹੀ ਭਜਨ, ਜ਼ਮੀਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स दे राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी नाल गलबात करेंगे। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। क्रिकेट वांग रंग बदलदी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदानां दा रोमांच, मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: पहल की गई है जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21 22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है
1: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पएगा
0: जरूरी नहीं तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो
1: अप्लाई किवें करिए
0: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है सहायता लई 011-23-11-2428 ते संपर्क करो
1: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
4: प्रोग्राम चल रहा है हेलो फरमाइश और साढ़े अगले कॉलर दो साढ़े नाल जुड़ गए ने आओ उन्होंने नाल रब्ता कायम करते हैं नमस्कार जी कौन बोल रहे ने
5: हाँ जी हम आपकी राहों में निगाहें बिछाए बैठे हैं हम आपकी राहों में निगाहें बिछाए बैठे हैं जंदर पेड़ से इतना प्यार है खुदा की कसम हम खुदा का बुलाए बैठे हैं मैं हरपाल गिल मलदार नामपुरा कोटपुरा तो सर
4: अरे वाह जी वाह तुसी वैसे आ हुण जिहड़ा आप कीता ना मैनू पहले लग्या सी पाप कहंदे पे मैं सोचण लग पिया मैं केड़ी गलती कर लई है
5: नहीं नहीं आज आज
4: बहुत बहुत शुक्रिया जी
5: इससे फिल्म दा या जवार पड़ा जो गीत सुनाओ
4: आ मैं समझ गया जी समझ गया तुसी ਜਵਾਹਰ ਭਾਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਹਰ ਭਾਟਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
4: ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
5: ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਪੂਰੀ
4: ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ
5: ਪੂਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 42-43 ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ
4: ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਰ
4: ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
5: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा

कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन

पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है
मेघालय के

ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी

0: बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ

0: ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से

0: आर पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जाँच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21 22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
3: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा?
2: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
3: अप्लाई किवें करिए?
2: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
3: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
4: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण बच्चे अपना प्रोग्राम सुनेंगे, बाल जगत।

0: जय हिंद।
1: काली बौली रात अलोपी होया दूर हनेरा, नविया आस उमंगा लेके आया नवा सवेरा। ते लो जी, ऐतवार दी इस खूबसूरत जी दोपहर नू होर ज्यादा खूबसूरत बनाउण दे लई तुहाडे रेडियो सेट उपर हाजिर हो चुके ने सुखदीप और हरप्रीत,
0: और पूरे फुल फ्लेज मूड दे नाल आए ने इस करके क्योंकि सानू पता है कि ए जिहड़ा प्रोग्राम बाल जगत है ना, तुसी बड़ी बेसब्री दे नाल इंतजार कर रहे हो और तुसी चाहुंदे हो कि सानू ढेर सारा मनोरंजन साडा कीता जावे और सानू ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कीती जावे।
1: लो जी प्यारे बच्चे, पता ही नहीं लग्या कि जून दा महीना किन्नी जल्दी बीत गया। और देखो जी प्यारे बच्चे, कहिंदे ने कि छुट्टियां ते हले कल होईयां सी,

0: खतरनाक हो गया है और ये प्रदूषण ही साड़ियाँ बहुत सारिया बीमारियों का कारण बनता जाता है प्यारे बच्चों। सो असी जे पैदल चलांगे, असी जे साइकिल का इस्तेमाल करांगे, असी जे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नूं ज़्यादा वधावा देंगे तो प्यारे बच्चों इस प्रदूषण के विकराल रूप तो बच सकते हैं। सो साडे सारियां दे मिल मिला के ही ये सारिया चीज़ा करन दे नाल इहदा हल होना है। और लो जी, बाल जगत दे विच ते बहुत सारे बच्चे बड़िया खूबसूरत वालिया रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं। और हरप्रीत, अगे केड़ा बच्चा आ रहा है?
1: देखो जी, बच्चा जिहड़ा परफॉर्म करूंगा वह भी कोई ना कोई सेध वाली गल ही साडे नाल सांझी करेगा।
0: बिल्कुल।
1: चाहे प्रदूषण विशा होवे, चाहे विशा होवे रुख लगाउणा, चाहे विशा होवे अपना बस्ते नूं पैक करना, चाहे हॉलीडेज होमवर्क,
0: वाह,
1: किसी भी टॉपिक ते अगर बच्चे जदों गल करदे ने, असीं बच्चिओ, मैं और सुखदीप वीर जी या पूरा आकाशवाणी, यह उम्मीद करदे हां कि तुसीं जरूर उस चीज़ ते खुद अमली जामा पहनांदे हो, इंप्लीमेंट करदे हो, है ना। जे असीं कहिंदे पिया कि तुसीं रुख लगाउणे हैं तो असीं उम्मीद यही करके अगे चलते हैं कि हाँ जी तुसीं लगा रहे हो, तुसीं पोल्यूशन नूं अवॉइड कर रहे हो, तुसीं अपने पेरेंट्स नूं भी गाइड कर रहे हो कि जे असीं लाइटां ते खड़े हाँ तो अपना एक्टिवा ना तुसीं ऑन करके रखो, ना ना तो फजूल हॉर्न वजाओ, ना फजूल इंजन नूं चलाओ। मतलब इदा दी निक्के निक्के चीज़ां, इदा दे निक्के निक्के उपराले तुसीं कर रहे हो, यह साडी अजम्पशन है। तो असीं चाहुंदे हां कि असीं अपनी अजम्पशन ते खरे उतरीए और हुण वाकई देखदे हां, सुणदे हां कि अगला बच्चा कहड़ा विशा लै के साडे नाल सांझ पाउण लगा।
2: सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम अमित है ते मैं 8वीं जमात विच पढ़दा। अज मैं तुहानू बाल जगत प्रोग्राम विच एक कविता सुनाना चाहुंदा हाँ, जिसका शीर्षक है मेरा पंजाब ते मेरा देश। मनुखता दिल चो कदे न मुक्के, आवण जावण दुख ते सुख, जात पात मजहब ना वेखण, ढिड दी भुख ते नीम दा रुख। विरसा अपना गुरुआ दी बाणी, नहीं कोई लोड़ वसीता दी, जिउंदे जी असी भुल नहीं सकदे, देण बजुर्गा दी ते तेग शहीदां दी। पैसा रुतबा नाल नहीं जाना, वे गल मन इसलाई लगदी, मेहर साई नाल रवे हमेशा, रावी वगदी ते अणगिस पगदी। हरे भरे ते रहण महक दे, अपना पिंड ते अपने खेत, दो चीजा तो जान मैं वारा, एक पंजाब ते एक मेरा देश। धन्यवाद।
0: धन्यवाद उन्हां सारे बच्चियां दा जिन्हां ने अज बाल जगत दे वेड़े दे विच अपनी खूबसूरत आवाज़ दे नाल हाजरी लगवाई है जी। इन्हां हाजरियां दा प्यारे बच्चे सानू बेसब्री दे नाल इंतजार रहिंदा है। और तुसी की करना है, अपने स्मार्टफोन दे उत्ते किसी शांत एकांत रूम दे विच सानू रिकॉर्डिंग करके भेजनी है और फिर उन्हूं वट्सअप ते अटैचमेंट करके साढ़े उस नंबर दे उत्ते भेज देनी है जिहड़ा असीं तुहानूं ऑलरेडी दस चुके हैं और अज भी जरूर प्रोग्राम दे विच दसांगे। और प्यारे बच्चों दियाँ खूबसूरत वालियाँ परफॉर्मेंस चलदियाँ पईयां ने और ये परफॉर्मेंस प्यारे बच्चों तुसी घर बैठे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। तो लाओ जी, हुण रुक करदे हां अगले बाल कलाकार वाल।
1: सुखदीप वीर जी, सिर्फ एक बाल कलाकार नहीं हैगा, एथे कलाकार्स ने मतलब जी ग्रुप प्रेजेंटेशन आई है जी सानू रिकॉर्ड होके, और एदे विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी पूरा तालमेल है। तो जदों भी ग्रुप सोंग गाया अगलिया ने, तो जदों ग्रुप सोंग हुंदा उहदे विच वधिया रिदम और सब कुछ हुंदा, तो सुनदे हां बच्चियां वल्लों प्रेजेंटेड अ ग्रुप सोंग।

0: होते हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे।
1: बच्चों जी हैप्पी बर्थडे साडे वालों भी उस बच्चे नूं जिदा अज 28 जून नूं बर्थडे है, और उन्हां सारे बच्चियां नूं जिन्हां दा आउण वाले हफ्ते दे विच बर्थडे होएगा। तुहानूं सारिआं नूं बैल जगत दी टीम वल्लों बहुत बहुत मुबारकां। तुसीं चढ़दी कला च रहो, तुसीं अच्छा अच्छी पढ़ाई करो, सेहत याबता होवो और मापिआं दा आग्ञाकार बणो। साडे वल्लों इही दुआ है तुहानूं। ते सुखदीप वीर जी पिटारा खोल लईए।
2: बिल्कुल जी, नॉलेज टाइम दा पिटारा खोलिया जावे और प्यारे बच्चे अपनी बिरतियां नू कर लो एकागर, क्योंकि हुण तुहानू असी बहुत सारी नॉलेज देण वाले आ प्रोग्राम दे अखीर दे विच। ते सब तो पहला रुख करदे आ जी एक बड़े ही खास दिन, और इस दिन की महत्ता तुहानू तुहाडे हरप्रीत दीदी दसणगे।
1: दिन है जी 29 जून का और नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे हैगा जी, और यह दिन इस करके

0: ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਲ ਜਗਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ICC ਵੁਮੈਨਸ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਫ ਟਿਊਬ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 6:30 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता

जारी है। दोनों नेता भारत सीशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सीशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सीशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तुम
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेज आए, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: तां पैसे गवाओगे।
4: RBI कहिंदा है
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।
6: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां इस तरह है। दिन 1:15 ते होएगा प्रोग्राम फौजी मेरा लई, बाद दोपहर 2 बजे फौजी मेरा लई प्रोग्राम जारी रहेगा। बाद दोपहर 2:15 दोपहर समाचार ते बाद दोपहर 2:30 रंगली धरती। रंगली धरती विच अज दे कलाकार हरदेव सिंह कंवल ते साथी, तुसीं इन्हां दी गाई हुई कविश्री सुणोगे। शाम 4 बजे मुख खबरां ते उस तों बाद होएगा अंग्रेजी पत्रिका स्पैक्ट्रम। इस विच विकास उन्हां दी कहानी होएगी ते इस अलावा रश्मि सिंह अपनी कवितावां सुनाउणगे। श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण शामी 4:30 ते शाम 5:30 तुसीं सरवण करोगे गुरबाणी विचार प्रोग्राम। देहाती प्रोग्राम दा समां रहेगा शाम 6:30 जिस विच गलबात होएगी सदाबहार फलदार बूटे लगाउणा। इस विषय ते जानकारी देणगे BS ढिल्लों। संगीत रूपक गीत संगीत ते मौसम दी जानकारी दित्ती जाएगी। वगदे पाणी विच रात 7:40 ते सुखमिंदर सेखों दा कविता पाठ होएगा। रात 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियों लई प्रसारण मन की बात का पंजाबी रूपांतर मुड़ प्रसारण सुनों के रात 8 बजे। समासिक वर फिर दस रहे अज रात 8 बजे। रात 9:00

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने जून विच स्वदेशी तौर पर विकसित C-295 जहाज़ की पहली उड़ान नाल हवाबाजी खेतर च एक वड्डी सफलता हासिल की है। अज आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश लोगों नाल अपने विचार सांझे करदिआं श्री मोदी ने कहा कि देश च इस समय 40 होर अजिहे जहाज़ बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस नाल सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां MSME अते एयरस्पेस जिहे खेतरां नूं उत्साह मिल रहा है ते नवें रुजगार के मौके पैदा हो रहे हैं ते एक आत्म निर्भर भारत का संकल्प होर मजबूत हो रहा है।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बारे भी गल की थी, जिसनों दुनिया भर में मनाया गया। इस साल इस समागम 2500 तो वध थावां ते आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने अहमदाबाद च विश्व योगासन चैंपियनशिप 102 सोने के तमगे समेत कुल 114 तमगे जीते, जो तमगे की सूची में शिखर ते रहा। श्री मोदी ने सारे जेतू अथलीटा नूं वधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जनतक भागीदारी भारत लिए बहुत खुशी की गल है। उन्होंने कहा कि पछमी एशिया में जंग वर्गी स्थिति के मद्देनज़र कुछ थावां ते नागरिकां ने सोने की खरीददारी ते विदेशी यात्रा नूं अस्थाई तौर पर मुलतवी करके एकजुटता का विखाला किया। श्री मोदी ने नागरिकां नूं खेतीबाड़ी वाली जमीन नूं रसायणां तो दूर रखण ते कुदरती खादां की वरतों करके अपनी जमीन की वध तो वध खेती करन दी अपील की। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने कार पुलिंग संबंधी अपने तजर्बे सांझे किए ने। एको दिशा च यात्रा करने वाले बहुत सारे लोगों ने कार पुलिंग की वरतों करके इकट्ठिया यात्रा करन नूं तरजीह दी है। लोग बसां ते मैट्रो की वरतों कर रहे हैं, जिस नाल पैट्रोल ते डीजल की बचत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि देश के कई खेतरां च कुदरती खादां वरतों वधन दियां खबरां ने। उन्होंने तसली जाहर की कि भारत इस आलमी संकट का सामना करने लिए एकजुट है। श्री मोदी ने विश्वास जाहर किया कि जनतक भागीदारी की यह शक्ति देश को मजबूत करेगी ते सफलता वाल लै जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में भगवान वाल्मीकि के मंदिर नेड़े माता सीता और लवकुश का मंदिर बनाने का ऐलान किया। अज अमृतसर विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान अमृतसर ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ

0: सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की महत्ता बारे भी गल की थी। उन्होंने कहा कि योजना किसी व्यक्ति के परिवार को उसकी बदकिस्मती नाल मौत होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने लोगों को अपील की थी कि वह गणेश उत्सव दौरान अपने आले दुआले गणपति बप्पा दी मूर्तियां कुम्हार ते स्थानक कलाकारों वालों हाथ नाल बनाईयां मूर्तियां लैन। उन्होंने मूर्तिकारों को भी मिट्टी दी मूर्तियां को तरजीह देने की अपील की थी। श्री मोदी ने कहा कि मिट्टी दी मूर्तियां पानी में आसानी नाल घुल जांदियां ने, जिस नाल दरियावां तलाअ ते चगिरदे दी रख्या हुंदी है। अंत विच पानी दी संभाल बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मीह दे पानी दी हर बूंद नूं बचाया जाना चाहिदा है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सेशल दे राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी विचकार वड्डी गल्लबात जारी है। दोवें नेता भारत सेशल संबंधां दे सारे पहलुआं दा जायजा लै रहे ने ते खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते चर्चा कर रहे ने। इस तो पहला राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी की मौजूदगी में स्टेट हाउस विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री अज सेशल्स की राष्ट्रीय असैम्बली संबोधन करेंगे अते भारतीय भाईचारे के मैंबरां नाल मुलाकात करेंगे। इस तो बाद मुख मेहमान वजो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे। भारतीय हथियारबंद फौजां दी टुकड़ी ते 2 भारतीय समुद्री फौज दे जंगी जहाज भी जश्नां विच हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनां दे सरकारी दौरे ते सेशल्स विच ने। इह खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल @AIRRN जलंधर। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने विच पिंडां दी केंद्री भूमिका को उजागर किया। नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधन करदे श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना तहत राज्यां दे योगदान समेत 1,51,000 करोड़ रुपए तो वध दी व्यवस्था की गई है ताकि देहाती विकास को तेज किया जा सके ते नाल ही देहाती मजदूरों लई उपजीविका की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। उन्हां अगे कहा कि पंचायतों नूं जमीनी पद्धर ते शासन नूं होर मजबूत करन अते देहाती भाईचारियां नूं भी मजबूत बनाउण लई काफ़ी माली सहायता मिलती रहेगी। उन्हां ने इस गल ते जोर दिता कि देहाती उपजीविका मिशन तहत 10 करोड़ तों वध औरतां नूं स्वै सहायता समूहां नाल जोड़िया गया है, जिस नाल औरतां दी अगवाई वाले विकास अते देहाती उद्यमशीलता नूं मजबूत बनाया जा सके। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकां नूं सलाह दित्ती है कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा उदों तक शुरू ना करन जदों तक उन्हां नूं अपनी यात्रा लई लोड़ींदे सारे दस्तावेज प्राप्त ना हो जाण। मंत्रालय ने यह सलाह उन्हां भारतीय नागरिकां दीआं सहायता दीआं बेनतीआं तों बाद जारी कीती है जो निजी टूर ऑपरेटरां राहीं चीन लई लोड़ींदे प्रवेश परमिट ते बिना वीजा तों नेपाल विच फस गए ने। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेजा के बिना जां लोड़ींदे दस्तावेजा के मिलण की उम्मीद विच यात्रा शुरू करन नाल श्रद्धालुआं दे फसण की संभावना बढ़ जाती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुआं नूं यह भी सलाह दित्ती है कि वह यात्रा करन तों पहलां यह यकीनी बनाउण कि उन्हां दा टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड अते अधिकारित है जां नहीं। ऑपरेशन अमिस्ताद तहत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच भरोसा प्रगट किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट, राहत सप्लाई, दवाई ते डॉक्टर उपकरण भूचाल तो बाद वेनेजुएला विच चल रहे राहत यत्नां नूं मजबूती देणगे। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने मैडिकल उपकरण नेम 2017 विच सोधां दी तजवीज़ रखी है। इसका उद्देश मैडिकल उपकरण निर्माण लाइसेंस जारी करन विच तेजी लियाउणा ते प्रक्रिया नूं सरल बनाउणा है। तजवीज़ मुताबिक लाइसेंस जारी करन दी समा सीमा घटाई जाएगी जदों कि गुणवत्ता ते सुरक्षा मापदंडां नाल समझौता नहीं कीता जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में एक खरड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है जिस विच सारे हिस्सेदारों तो सुझाव ते टिप्पणियां मंगियां गईयां ने। यह सोधा कारोबार करन विच आसानी नूं वधाउणगियां अते देश विच गुणवत्ता वाले मैडिकल उपकरणों की समय सिर उपलब्धता नूं यकीनी बनाउणगियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव नूं उन्हां दी जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया संदेश विच उन्हां कहा कि श्री राव ने एक अहम समय दौरान भारत की तरक्की विच अनमोल योगदान पाया। खेडां विच औरतां दे ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप विच अज लंडन च ग्रुप ए दे अपने आखिरी मैच विच भारत दा मुकाबला

0: गौतम खेर जीते।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई, इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मग़रबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कारपूल का इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों से भी ये दरख्वास्त की थी कि वो बगैर केमिकल वाली खेती इख्तियार करें, अपने खेतों का तहफ्फुज करें और कुदरती खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ ताउन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों कुंबों को तहफ़ुज़ाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतल्लिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिलती है, जबकि इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। मन की बात के इस नशरिये में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवहुम परस्ती या अंधविश्वास के मौजू पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज़ हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि ये हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि अंधविश्वास की वजह से उन दरख्तों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले होते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हयातियाती उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अवाम के जहन में पैवस्त इस गलत तासुर को बदलने का अहद किया और ख्वातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। रफ्ता रफ्ता ख्वातीन उनकी मुहिम में शामिल होती गईं और एक बड़ी कायापलट का आगाज हुआ। अपने खिताब के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। विक्टोरिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी के साथ 2 तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हरमेनी भी मौजूद थे। जनाब मोदी सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब भी करेंगे और वहां रहने वाली भारतीय बिरादरी के लोगों से मिलेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म एजाजी मेहमान की हैसियत से सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरतेहाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमजोर जंगबंदी टूट गई है। दोनों ही मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान के 10 फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। इससे कबल अमरीका ने ईरान पर एक कमर्शियल तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला करने का इल्जाम लगाया था। उधर ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ चंद घंटों में ही जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद दवाओं और तिब्बी साजो सामान से वहां जल्जले से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकवीत मिलेगी। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक कि उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत नेपाल में फंसे उन भारतीय यात्रियों की जानिब से

0: परिषद की दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद जारी की है, जो निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना हुए थे। आईसीसी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। और ख्वातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं फौजी वीरो, एक बार फिर आप सब का स्वागत है। आओ सुनते हैं गीत, फिल्म है आंधी, गायक कलाकार किशोर कुमार ते लता मंगेशकर।

तो सुंदर से फिल्म आंधी द गीत, गाय कलाकार लता मंगेशकर ते किशोर कुमार। आवन सुनदा प्रोग्राम दा अगला गीत। आशा भोसले, अमित कुमार ते साधना सरगम नू सुनदे हां। फिल्म है तड़प।

0: अपना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण

0: के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई, 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है।

0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बदलो आदत, बदलो।
2: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके फाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो, सचेत रहो।
3: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रंगली धरती आओ सुनदे हैं इस अंतर्गत हरदेव सिंह कंवल ते साथियों दी गाई हुई कविश्री। सुनदे हैं कविश्री। श्री चमकौर साहिब दी जंग, शहीदी वड्डे साहिब साधे। गाय कलाकार हरदेव सिंह कंवल, कविश्र ते साथी।
4: ओ लड़दा जदो वजीद सिंह देखे सिंह जजारो, गुरु पिता नू आखदा मैं भी जंग नू त्यार। ओए जदो सिंह जीत लड़िया थर थर कम दे करते गिरी, छोटा वीर देख रहा पा गया वड्डा वीर शहीदी।
5: ओ सतगुरु दस मैनू पिता जी मैं भी जंग नू त्यार, पौन पानी रुक खड़े चलिया जंग नू सिंह जुजारो।
4: ओ गुर कहा गोविंद सिंह ने बच्चा क्षत्री धर्म है यही, बिच जंग शहीद होना अब दी सफल समझ दे देही।
5: मुख तो बालक दा लगे सिर सजाउन दस्तार, पौन पानी रुक खड़े चलिया जंग नू सिंह जुजारो।
4: ओ सिंह सूरे तक रहे कोमल पुत हंसारी जोड़ी, तन जिगरा सतगुरु दा हथी चाड़े मौत दी कोड़ी।
5: मत्था पिछ ठोकी दे के हथ छोटी तलवार, दे के हथ छोटी तलवार, पौन पानी रुक खड़े चलिया जंग नू सिंह जुजार।
4: ओ नाराज पाग लैना ना कोई लालच लोभ खियारा, ना कोई लालच लोभ खियारा, सरबंस धर्म उत्ते वारे मां गुजरी दा लालो।
5: जो बिजली निशक रही दे के हथ छोटी तलवार, पौन पानी रुक खड़े चलिया जंग नू सिंह जुजार।
4: ओ जा गजिया बिच दला केरा का।

0: खंडा जाके हाथ में कलगी सोहे सीसा, सो हमरी रक्षा करे कलगी तार जगदीसा।
1: हुकम पंज प्यारा दा मना, गुरु निकले गड़ी दीवारी पना, कहने देवते हों।

0: ताड़ी मार के, ताड़ी मार के कहना खीरा, हथ देखो सूरमा वीरा, मैं चलिया दरा नू चीर ना चानन, इंद दा गुरु साहिब आवाजा मार रहे, गुरु सिखां दा फड़ लो जांदा पीर हिंदी दा।
1: ओ पादशाही फौज दे हर गए, दूजे ते दूजा वर्गे, लड़ लड़ आपस विच मर गए, जगत जी नू निंद दा।

0: तुम जेठ दी दुपहरा कड़के धरती सुर के हो गई सड़के छुपे पंची आलनी बड़के बिच कख पत्ती दे सुन पैने नी गुरु पंचमनी जप मार के बैठा उते तवी तती दे
1: हेरा आगू गजब दी मचे उते बैठे सतगुरु सच्चे सजजत नंद रूप रस रचे परे गुण शक्ति रे सुन पैने नी गुरु अर्जुन जी बाणी पढ़दा बैठे उते तवी तती दे
0: सरने गुरां दी लागी मियां मीर ने समाधी त्यागी पापी चंदू जहे न पागी रूंदे बाग कत्ती रे सुन पैने नी गुरु पंचम जी जप मार के बैठा उते तवी तती रे

0: बैठा होते तभी ततीरे
1: हाथ जोड़ी खड़े हन हर जना हाथ जोड़ी खड़े हन हर जना तन्ने तन्ने सतगुरु अर्जना
0: ओ गुरुदेव सिंह नु बरजन गुरु समत्ती दे सुन पैणे नी गुरु पंचम जी
1: जप मार के बैठा उते तवी तती दे
0: सुख दुख बिच मस्त।

0: हथ जोड़ी खड़े हन हरजन तन तन सतगुरु अर्जन।
1: ओ हरदेव सिंह नु वर्जन गुरु समत्ति रे सुन पैड़े नी गुरु पंचमी चप मार के बैठा उते तवी तती रे।
2: कवि श्री श्री गुरु अर्जन देव जी तो सुन रहे सी हरदेव सिंह कंवल के विषय ते साथियों और आवास विच एसी प्रोग्राम रंगली धरती। इस अंतर्गत तो सुन रहे सी हरदेव सिंह कंवल के विषय ते साथियों और आवास विच कविश्री। अजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकों विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसे तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इनफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
3: हेलो,
4: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर

0: सामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले।
3: नमस्कार, DTHDR पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। इस वक्त 3:08 हो चुके हैं तो समा हो रहा है प्रोग्राम न्यूज़ हेडलाइंस का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम विच भारत दे मेड इन इंडिया सी 295 जहाज की पहली उड़ान पूरी होने नाल हवाबाजी खेतर विच वड्डी सफलता हासिल करन ते माण प्रगट कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सेशल्स ते राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी विचकार सेशल्स विच दुवली गलबात जारी है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज विकसित भारत 2047 दे दृष्टिकोण नूं साकार करन विच पिंडा दी केंद्री भूमिका ते जोर दिता। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने मेडिकल उपकरण नीम 2017 विच सोधा दी तजवीज़ रखी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकां नूं उदों तक कैलाश मानसरोवर यात्रा ना करन लई कहा है जदों तक उन्हां दे सारे जरूरी यात्रा दस्तावेज पूरे ना होण। तीन जुलाई नूं शुरू होण वाली सालाना अमरनाथ जी यात्रा तों पहला सुरक्षा एजेंसियां वल्लों जम्मू कश्मीर विच एक व्यापक बहुपद्धरी सुरक्षा अभ्यास मुकम्मल। शरधालुआं दा यात्री बेस कैंप विच पहुँचना शुरू। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर विच भगवान वाल्मीकि दे मंदिर दे नेड़े माता सीता तिलवकुश दा मंदिर बनाउण दा ऐलान कीता है। पंजाब राज खुराक कमिशन वल्लों आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस AI माहिर निपुण सियाल नाल इक विचार वटांदरा सैशन कीता गया। पंजाब सरकार वल्लों अज सरकारी कॉलेज स्टेडियम गुरदासपुर विखे कराए जा रहे एक शाम भगवान शिव दे नाम प्रोग्राम च मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी भगवान शिव दा गुणगान करेंगे। प्रोग्राम शामी करीब 6 बजे शुरू होवेगा। ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ICC 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੰਡਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल तुहाडे। इस वक्त 3:34 ते 34 सैकेंड हो चुके ने ते समा हो गया है प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दा। सत श्री अकाल जी, चिट्ठियां मिठियां प्रोग्राम देख रखे सुन रहे सारे स्रोतियां दा निग्गा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडी अपनी दोस्त ते मेजबान लेके हाजिर हाँ प्यारियां चिट्ठियां दा पिटारा। कहंदे ने कि डिजिटल जमाने विच वी चिट्ठी दी मिठत कदे घट नहीं हुंदी। लफ्ज़ां दे विच परो के भेजा है सब ने अपना प्यार इन्हां चिट्ठियां राहीं। हाँ जी दोस्तों, चिट्ठियां बहुत सारियां ने ते मैं हाजिर हाँ प्रोग्राम लेके चिट्ठियां मिठियां। मैं तुहाड़ी दोस्त ते होस्ट डॉक्टर पूनम हाजिर हाँ अज का ये प्रोग्राम लेके ते हुण आपां एक एक करके सारियां चिट्ठियां जरूर पढ़ांगे। दोस्तों, चिट्ठी आई है चाहल कला नवां शहर तो। भेजन वाले ने अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर ते अंबा चाहल। इन्होंने

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियाँ मिठियाँ, तो इस वक्त मैं आरजी पूनम सेठी तुहाडे नाल जुड़ी हुई हाँ। दोस्तों वैसे अज के इस डिजिटल दौर जदों मैसेज एक सैकेंड विच पहुँच जाता है, उदों चिट्ठी का इंतज़ार करना अपने आप विच एक वक्रा ही सुकून है। तो असी भी इदा ही आकाशवाणी जलंधर तुहाडियां चिट्ठियां का इंतज़ार करते हैं, तो जदों असी पढ़ते हाँ साढ़े उही स्रोते साढ़े उही हर वेले असी उन्हां ही स्रोतियां दी चिट्ठियां पढ़ते हैं, और बहुत चंगा लगता कि इन्ने सालों तो ये लोग साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, तो एक उन्हां दी चिट्ठियां पढ़ के बहुत ही सुकून फील हुंदा। तो हुण आपां प्रोग्राम नूं अगे वधाउने आ, कुछ होर चिट्ठियां पढ़ते हैं। चिट्ठी आई है बहुत दूरों आई है, उत्तर प्रदेश तो चिट्ठी आई है, खुरजा उत्तर प्रदेश तो। लिखण वाले ने तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। इन्हां तों इलावा चिट्ठी भेजी है मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, ज़िला मुक्तसर पिंड मोहल्ला तो पॉल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोहल्ला तो, दर्शन बराड़, मलकीत खुड़ियाना। इन्हां तों इलावा जिन्हां ने चिट्ठी भेजी है वो आई है मंडी गोलू वाला राजस्थान तो, बहुत दूरों ये चिट्ठी आई है। जिवें कि मैं हुणे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सुकून मिलता है कि साढ़े स्रोते आ जिहड़े इन्ने सालों तो साढ़े नाल जुड़े हुए ने, असी बार बार उन्हां दीआं चिट्ठियां पढ़ते हाँ तो सानूं बहुत ही चंगा लगता है। अच्छा, इन्हां ने चिट्ठी लिखी है तो ये लिखण वालिआं दा नाम है ब्रिज लाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। इन्हां तों इलावा जिन्हां ने सानूं चिट्ठी लिखी है वो लिखी है भोला सुहाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, पोतरी रितम जोत, पोतरा गुरतेश्वर, अभिजोत गुंताज, तो दोस्त बलतेज सिंह कुड़ियाना, आर पी सिंह, निहाल खेड़ा, ज्ञान चंद, तो विछड़ी रूह सिकंदर सिंह सुहाग। तो इन्हां तों इलावा जिन्हां ने चिट्ठी लिखी है वो आई है अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो, लिखण वाले ने कुलवंत मान, लिखवंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर, राजा सिंह मान, कुलविंदर कौर, ते के एस मान। ये सरदूल सिकंदर की आवाज़ में एक गीत सुनना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत ही वधिया गीत लभ्या, जुग जुग जियो भाबियाँ, आओ सुनते हैं गीत।

हाँ जी दोस्तों, कदे वक्त सी जदों डाकिए दी उड़ीक सारा पिंड करदा सी। अज उही उड़ीक असी इस शो विच तुहाड़ियां चिट्ठियां लई करदे हां। चिट्ठी लिखण दा चाह ते पढ़न दी खुशी दुनिया दे किसी भी सोशल मीडिया ऐप विच नहीं मिल सकती, ते उही तां असी कर रहे हां, तुहाड़ियां चिट्ठियां पढ़ रहे हां। हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम नूं अगे वधाउने हां। अगली चिट्ठी आई है बस अड्डा हाजीपुर वाले रीका, सोनू, मैसी, बिट्टू, लाली, बाली, जीवन, टोनी, रजनीश, सोकी, ते इन्हां तों अलावा जिन्हां ने सानूं चिट्ठी लिखी है वो आई है हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, डॉक्टर तरमवीर लोदड़, मुकेश जांगू, जगसीर सिंह पंजू वालों। फिर चिट्ठी लिखी है मसीता डब्वाली तो, दर्शन लौट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लॉट ने। इन्हों तो अलावा चिट्ठी आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, लिखन वाले ने मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, हार्दिक निहारिका ते वंश बत्ता। फिर चिट्ठी आई है ज़िला फाजिलका पिंड कुड़ियाना तो, लिखन वाले ने पोला सुहाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, रितमनजोत, गुरतेश्वर, अभिजोत, गुणताज ते दोस्त बल।

हाँ जी दोस्तों, हुण समा तां ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ी जिहियां तीन कु चिट्ठियां होर आपां पढ़ांगे, उस तों बाद आपां अज ते इस प्रोग्राम तों इजाज़त लवांगे। हाँ जी दोस्तों, अगली चिट्ठी आई है पवनाल शहर हाजीपुर तों। लिखण वाले ने गोकुल दास, पत्नी बिमला, पुत्र विजय कौंडल, रजनीश कौंडल, राज कौंडल, परमजीत, आर के कौंडल, के कौंडल ते सारा कौंडल परिवार। फिर चिट्ठी आई है मुक्तसर तो बब्बू सिंह तीमन, बलजीत कौर तीमन, रवनीत, निशु ते भूपिंदर वालों। फिर चिट्ठी आई है सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो, लिखण वाले ने टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका तो शबचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल। लो जी, अगली चिट्ठी की फरमाइश वाला गीत सुन के तुहाड़ी रूह खुश हो जाएगी, क्योंकि ये गीत सीधा दिल विच लै जांदा है। सुरां दे इस वंजारे का गीत सुनो ते गुआच जाओ यादा दे एक खूबसूरत समंदर विच। बहुत ही प्यारा गीत है महेंद्र कपूर की आवाज़ विच। आओ सुनते हैं गीत। मोहब्बत।

हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण। असीं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 5:30 बज चुके ने। आओ हुण सरवण करते हैं साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब सर्ब सांझीवालता बराबरता प्रभु प्रेम सुचजी जीवन जुगत सर्ब धर्म सद्भावना वाले अणमुले सिद्धांतों के खजाने ने इन्हां विचली उचारित बाणी धुर की बाणी है। मुखारबिंद गुरु साहबान भगत साहबान अते प्रभु भगती नाल एक सुर होए महापुरखां दा है। एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक प्रभु उस्तत है, मनुखता वास्ते मार्गदर्शन है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी राग बिलावल विच उचारे शब्द विच मंगलाचरण उपरंत बेअंत प्रभु दे कथन तो परे गुणा बारे हवाला दिंदे हन कि हे प्रभु, तू तां वड्डा राजा है, जे मैं तैनू मुखिया आखदा हाँ तो तेरी की वड्याई करदा हाँ। हे प्रभु, वह भी जैसी तू मत दिना है मैं उस अनुसार ही आप जी दे बारे बयान करता हाँ। मैं मूरख की उस्तत कर सकता हाँ, मैनू आप जी दे गुण बयान करन दी सोझी बख्शो, जिस नाल मैं आप जी दी रजा विच राजी रह सकां। जो कुछ भी वरत रहा है वह सब तेरे हुक्म विच ही वरत रहा है, ये आप ही जानते हो। आप बेअंत प्रभु हो, मैं ज्ञानहीन हाँ, मेरी की सियाणप है, मैं की कहाँ, मैनू तो कोई गल आउंदी ही नहीं। तेरी कथा अकथ है, जो तैनू पाउंदा है मैं तो उही आख सकता हाँ। ये तो बहुत थोड़ी वड्याई है, मैं आप जी दी भगती तो हीणा जीव हाँ, तां भी तू मेरा खसम है, मेरा राखा है। तेरी ये शोभा दूर नहीं हुई कि तू मुढ़ कदीम तो ही शरण आए दी लाज रखता है। तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहण न जाई। सरवण करदे हां बीबी जसपिंदर नरूला होरां द्वारा गायन किया हुआ ये शब्द।

सुल्तान, कहा हो मिया तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। इस शब्द गायन की तसी बीबी जसपिंदर नरूला होरा ने। तू सम्र

0: समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to

0: join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
0: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਚਾਹਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036। ਈਮੇਲ ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ICC

साढ़े छे बजे तुसी मीडियम वेव ते सुनोगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 दे अंतर्गत भारत ते आस्ट्रेलिया दरमियान खेडे जाण वाले मैच दा अखी डिटा हाल साढ़े दिल्ली केंद्र तों। इस दे नाल ही साढ़े छे बजे ही तुसी साढ़े न्यूज़ ऑन AIR ऐप तों सुनोगे देहाती प्रोग्राम जिदे च कम दियां गल्लां तों इलावा सदा बहार फलदार बूटे लगाण बारे BS ढिल्लों जानकारी देणगे। इस तों इलावा संगीत रूपक कल दा प्रोग्राम ते मौसम दा हाल दस्या जाएगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

736 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल नाल 1.5 रुपया। इस योजना नाल हुण तक 27 करोड़ तो ज्यादा लोग जुड़े ने। इस दे तहत देश दे लगभग 11 लख परिवारों नूं लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत वड्डे ने। इन आंकड़ियां दे पिछे लखां परिवारां दी आपो अपनी कहानी है। किते किसे मां नूं बच्चियां दी पढ़ाई जारी रखण विच सहायता मिल गई, किते किसे पत्नी नूं घर दीआं जिम्मेदारियां संभालण दा सहारा मिल गया। साथियो, कई बार बहुत वड्डी सुरक्षा दी शुरुआत बहुत छोटी रकम ते छोटे जे कदम नाल हो सकती है। छोटा जिहा फैसला भी बहुत वड्डा बदलाव करता है। मेरी तुहानूं सारिआं नूं बेनती है कि अपने परिवार विच इन्हां योजनावां दी जानकारी जरूर सांझी करो। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात विच हुण गल एक अजिहे विशे दी जो हजारां साल पुराना है, हजारां सालां तों मनुखी समाज विच घर घर के बैठ गया है। ये विशा है अंधविश्वास दा। अंधविश्वास कई बार सिर्फ एक गलत धारणा नहीं हुंदा, वो डर पैदा करता है। ते जदों डर मन ते हावी हो जांदा तां इंसान सच नूं वेखणा ही बंद कर जांदा है। अंधविश्वास विच डुबे लोग फिर बिना तर्क दे, बिना सच जाने अजिहे फैसले लैण लगदे ने जिन्हां दा वड्डा नुकसान हुंदा है। उत्थे ही समाज विच अजिहे भी लोग हुंदे ने जो विज्ञान अनुभव ते तर्क दे आधार ते उन्हां धारणावां नूं चुनौती दिंदे ने। अंधविश्वास तों विश्वास तक दी यात्रा आसान नहीं हुंदी, अते अज मैं अजिही ही एक सफल यात्रा दे बारे तुहानूं जरूर दसना चाहुंदा। साथियों, असम विच एक पंछी पाया जांदा है, उस पंछी दा नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ पंछी है, एक कुदरत नूं साफ रखण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। लेकिन असम दे कुछ इलाकियां विच लंबे समय तक इस नूं अशुभ मन्निया जांदा सी। लोग इस नूं अपने आले दुआले वेखना पसंद नहीं करदे सन। कई बार उन्हां दरख्तां नूं भी कट दित्ता जांदा सी जिन्हां ते हरगिला दे आलणे बने हुंदे सन। सोचो, एक अजिहा पंछी जो वातावरण की सफाई विच सहायता करदा है, उही हरगिला लोकां दे डर दा शिकार बन गया सी। इसे दौरान जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखिया। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प किया। उन्होंने औरतों नाल गल की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। हौली हौली औरतां इस मुहिम नाल जुड़न लगियां। फिर एक वड्डा बदलाव शुरू होया। जिस पंछी नूं कदे अशुभ मन के भजाया जांदा सी, उही पिंडां दी पछाण बनन लगा। हजारां पेंडू औरतां हरगिला नूं बचाउण दे लई अगे आईयां। अज उन्हां नूं हरगिला आर्मी दे नाम नाल जाणिया जांदा है। इन्हां औरतां ने समाज दे नाल संघर्ष भी किया, समाज नूं समझाउण दे लई दिन रात काम किया, ते अंधविश्वास नूं पिछे छड्ड के रहे। उन्होंने विखाया कि जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वरियां पुरानी सोच भी बदल जाती है। साथियों, मैं अक्सर कहना जो खेड़दा वो खेड़दा है। अज देश विच अजिहे नौजवानों की गिनती बहुत तेजी नाल वध रही है जो खेड भी रहे ने ते खेड़ भी रहे ने। पहलां दी तुलना विच हुण किते ज्यादा नौजवान खेडां नूं करियर दे रूप विच अपना रहे ने। मैनूं नागालैंड दे दो अजिहे यतनां दे बारे जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला यतन है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुन के तुहानूं जरूर लगदा होएगा कि यह बहुत छोटे बच्चों की सधारण लीग होएगी, लेकिन अजिहा नहीं है। यह तो 5 तों 10-12 साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चे, फुल वर्गे बच्चों की एक असाधारण लीग, ते इन्हां बच्चों के फुटबॉल खिडारियों की एक अजिही लीग है जो उन्हां दी रफ्तार नूं ते योग्यता दे लई उन्हां नूं प्रेरित भी करती है ते उन्हां दी पछाण भी बनाउंदी है। इस दी शुरुआत नागालैंड दे ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों नूं फुटबॉल दे नाल जोड़न लई हुई सी। 5 तों 12 साल तक दे लड़के लड़कियां इस विच हिस्सा लै सकते ने। ये लीग हुण अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। इस लीग दा बच्चों दे मन ते बहुत चंगा प्रभाव पिया है। साथियों, नागालैंड विच एक होर चंगा यतन हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड वुमेन फुटसल लीग। हो सकता है तुहाडे लई फुटसल नवा नाम होवे, पर मैं तुहानूं दस दियां कि फुटसल नूं इनडोर फुट

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, कहा भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रा

0: चक्कर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
0: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने

0: कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सीमेन नदी की उफनती

0: धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गाँव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहाँ फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation-building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
3: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
2: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicine.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना

धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धातुन न कतट धात

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard ताल तीन ताल played on tabla by Sudhir Pandey. He was accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एनएस रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी प्रेजेंट लय विन्यासम ऑन मृदंगम बाय श्री एनएस कल्याण रामन।
2: पारंपरिक संगीत परिवार में जन्मे श्री एनएस कल्याण रामन आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध मृदंग वादक है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही मृदंग वादन पर गहरी रुचि दिखाई और अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री M.K.R. प्रसाद से प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विख्यात मृदंग विद्वान श्री दंडमुड़ि राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एनएस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। He showed keen interest in mridangam from a very young age and received his initial training under Sri M.K.R. Prasad. He later underwent advanced training under the renowned gurus Sri Dandamodi Ramohan Rao and Sri K. Veerabhadra Rao.
2: Sri N.S. Kalyana Raman ne Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankar Narayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Brothers aur Hyderabad Sisters jaise anek prakhyat sangeetajnyon ke saath sangat kiya. उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एनएस कल्याण रामन हैज अकंपनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टीएन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। ही हैज परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस सभास अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग मद्रास म्यूजिक एकेडमी।
2: श्री एन एस कल्याण रमन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार रहा। आपने चेन्नई और विजयवाड़ा आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटी पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchikamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: Aaj ke karyakram mein Sri N.S. Kalyana Raman mridangam par अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
3: टुनाइट श्री एनएस कल्याण रामन बिगिन्स हिज लय विन्यासम ऑन मृदंगम विद मिश्र जाति झंपे तालम।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति

0: जी नमस्कार, जी नमस्कार। सब तो पहला तो अपना तारुफ करवाओ, कौन बोल रहे हो, कितने बोल रहे हो?
1: सर। मैं कांता वर्मा बोल रही जी, गांव छटेरा तहसील कसौली जिला सोलन हिमाचल से जी।
0: जी कांता वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगात प्रोग्राम में।
1: बिल्कुल जी सर, आप बहुत अच्छी तरीके से लिसनरों से बात करते जी और बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम पेश करने के लिए।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी। अभी आप जो हमारे को भजन सुना रहे थे ना, चढ़ लइयां पहाड़ियां तेरियां माता रानी दी, एक भेंट सुना रहे सी आपा।
1: बिल्कुल जी, हम वैष्णो देवी गए थे जी।
0: ओ जय माता दी, जय माता दी।
1: हम बहुत प्यारे दर्शन हुए जी वहाँ पे, और कठिन चढ़ाई है जी, और सारे जो जी जितने भी लिसनर हमारे सुन रहे और जो सच्चे मन से जाते सर जी, वो वहाँ पे मतलब पूरी मुरादें पूरी करके आते हैं
0: पूरी
1: जी, रोते
0: करती
1: रोते
0: हैं
1: जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं जी।
0: जी, बिल्कुल। देखो जी, माता रानी ने मुरादां पूरियां करनिया ही हैं जे तुसी सच्चे मन दे नाल उन्हां दे दर्शन करोगे।
1: बिल्कुल जी, पैदल हमने पूरी चढ़ाई पैदल चढ़ी जी, और सुबह 6 बजे लगे हम चलने और 5 बजे पहुंचे शाम को, और भैरव बाबा के भी दर्शन किए जी। बोलते भी उनके दर्शन करने जरूरी होते हैं, फिर यात्रा सफल होती है जी।
0: यात्रा सफल होती है, बिल्कुल। और आपने इतनी चढ़ाई करी है और उसके बाद आप थक भी गए होंगे जब आप
1: हाँ जी, थक तो गए। हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए, जब माता रानी के दर्शन करने जाओ ना तो अपने आप शक्ति देती है वो।
1: बिल्कुल जी, वहाँ कुदरती है सर जी, बहुत चमत्कार होते हैं। बीच बीच में हुए ना हमारे साथ, तो हम हैरान हो गए, मतलब वाकई है कुछ वहाँ, यहाँ माता कहाँ बसी है, मतलब इतने ऊंचे पहाड़ पे ना जी।
0: जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल
0: देखिए आप वहां पे दर्शन करने गए हैं और सभी के लिए आपने दुआएं मांगी होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं।
1: बिल्कुल जी, सबके लिए मैं तो बोलूँ भी, सब जाओ और पैदल यात्रा करो। अगर नहीं पैदल यात्रा होती है, चलो किसी की मजबूरी होती है, तो घोड़े वगैरह वहाँ पे और हेलीकॉप्टर की
0: हाँ
1: वहाँ पे सुविधा है जी,
0: जी
1: और ट्रॉली की भी है जी। भैरव मंदिर को जाना हो तो ट्रॉली

0: की भी सुविधा है सर जी वहाँ पे,
1: जी बिल्कुल,
0: पर टाइम से होती है जी वहाँ, बुकिंग हो जाती है मेरे ख्याल पहले ना, जो
1: हाँ
0: हेलीकॉप्टर
1: हाँ
0: की होती है ना जी,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसकी बुकिंग पहले हो जाती जी, क्योंकि हमारे को पता नहीं था ऐसा। और जो ट्रॉली की है वो 4 बजे से पहले पहले होती जी, 5 बजे से बाद कोई ट्रॉली नहीं होती ऊपर के लिए
1: हाँ जी हाँ
0: घूमने
1: जी हाँ
0: फिरने
1: जी
0: के।
1: बिल्कुल। तो कांता जी बहुत अच्छा लगा, और आप माता रानी के दर्शन करके आए हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सभी जो हैं वो जाके दर्शन करेंगे, तो माता रानी जिस जिस को बुलाएगी वो जरूर जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने
0: बिल्कुल
1: के लिए।
0: जी, क्योंकि मजा आ गया हमें सर जी जब दर्शन किए ना अंदर माता के, तो गुफा देखी ऐसा लगता है जैसे हम यूट्यूब पे देखते थे, ओरिजिनल देखा तो बहुत मजा आया जी देखने का।
1: ओ,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: आज फिर कौन सी फरमाइश लेके आए हैं कांता जी?
0: सर, आप अपनी पसंद का सुना दो जी, बढ़िया सा सॉन्ग सुना दो लिसनरों के लिए, जितने भी हमारे इस टाइम सुन रहे प्रोग्राम जी।
1: चलिए सुनाते हैं जी आपको ये गीत। शुक्रिया जी कॉल करने के लिए कांता जी।
0: थैंक यू सर जी,
1: ओके
0: धन्यवाद
1: जी,
0: जी।
1: ओके ओके।

जी बहुत शुक्रिया शरण, तुसी और इसी तरह साडे प्रोग्राम दे नाल जुड़े रहना ते सुनाने आ तुहानू इसे फरमाइश दा गीत कंठ क्लियर दी आवाज दे विच। ओके जी, वेलकम जी।

0: जी दोस्तों, गल मुखी ना सज्जन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। क्या बात है जी, बिल्कुल सही गल है जी। रात जिहड़ी है उह तां मुक जाणी है, पर सज्जन नाल गल्लां नहीं मुकणियां, क्योंकि सज्जन नाल गल्लां जिन्नियां आपां करांगे उन्नियां ही घट है। मौका कदी कदी लगदा है ना, पर यह जिहड़ी रब दी रात हुंदी है, इसने ते अपने वक्त दे मुताबिक खत्म हो जाणा है। रात दे बाद सवेर चढ़नी चढ़नी है, तो जदों सवेर हो जाती है उदों फिर ये सोचते ने मुहब्बत करन वाले, प्यार करन वाले, भी ये रात मुक क्यों गई। खैर जी, साड़ा प्रोग्राम जड़ा है ये मुकना है 1 बजे। तुसी इस प्रोग्राम च जरूर पहुँचना है। 0181-2342-171 नंबर डायल करके प्रोग्राम सौगात दे विच तुहाड़ा दोस्त शाम शर्मा तुहाडी उड़ीक कर रहा है। जिवें साढ़े दोस्त पहुँचे ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हैलो
0: जी, स्वागत, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? जनक राज जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुरदासपुर तो बोल रहे हो जनक जी, प्रोग्राम अक्सर सुनते रहने हो? रोज सुन दे हूं। ते कॉल कदी कदी लगाने हूं?
1: नहीं, वो ही कोशिश कर लिया जी, कई बार दसन के जाता दो दा फ्रेंड
0: कमाला भी था नहीं जी। क्या बात है जी, बिल्कुल ये तो गल सही है जी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होंगी। जे तुसी कोशिश करते हो, साढ़े तक पहुँचते हो, तो जरूर तुहाडी पहुँच साढ़े तक होएगी। अज फिर जनक जी केड़ी फरमाइश लेके आए हो? मेरे दोस्त होम हुमा के चलणगे।
1: हाँ जी,
0: क्या बात है जी, बहुत देखो ये गल ठीक है जी। शिव कुमार बटालवी का गीत लिखा हुआ, आसा सिंह मस्ताना की आवाज दे विच गीत तुहाडी नज़र करांगे। गल सही है, जदों कोई दोस्त मित्र नेड़े दा चले जांदा है ना, उदों सानू बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि

0: क्या बात है जी, खूबसूरत गीत आसा सिंह मस्ताना दी आवाज दे विच आपां सारयां ने सुनिया। जदों मेरी अर्थी उठा के चलणगे, सब दोस्त हुम हुमा के चलणगे। इस तरह के गीत सिर्फ ते सिर्फ तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन सकते हो। DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो ये प्रोग्राम 1 बजे तक एवं जारी रहेगा और तुसी इस प्रोग्राम च आ सकते हो। 0181-3342-171 नंबर डायल करके। लो जी कॉलर आए ने। हैलो
1: हैलो, सत श्री अकाल सर
0: जी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी स्वागत है।
0: किवें चंडीगढ़ दी हाल ठीक ने?
1: बहुत वधिया ने सर जी, गर्मी बहुत
0: है। हां गर्मी दा देखो जी, हुण जोबन ते इस वेले। बिलकुल जी, देखो ये हुण कहिंदे ना सौण दी झड़ी जिहड़ी लगणी आ हुण जी, ते इस दे नाल फिर

जी दोस्तों, दुनिया दी कादी परवाह, आ जा आपां नचिए मजा चुने। बिल्कुल सही है जी, प्रोग्राम सौगात दे विच तुसीं वी दुनिया दी परवाह कीते बिना साडे इस प्रोग्राम च आ सकदे हो। 0181 23 42 171 नंबर डायल करके प्रोग्राम सौगात 1 बजे तक इसी तरह चलता रहेगा। तुहाडियां फोन कॉल्स दे नाल इस प्रोग्राम नूं आपां पंजाबी गीतां दी फरमाइश पूरी करनी है। तुहाडी फरमाइश करोड़ों दोस्तों तक तुहाडी आवाज़ जानी है, इस करके तुसीं इस प्रोग्राम च जरूर आओ। लो जी कॉलर आए ने। हैलो जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? जी जी, रवि कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। बहुत शुक्रिया जी, तुसीं सुनाओ, सेहत ठीक है? हूँ बहुत शुक्रिया जी, साड़ी तुसी हौसला अफजाई की, इस दे लई तुहाडा बहुत बहुत तहे दिल तो शुक्रिया अदा कर। हां जी, हां बिल्कुल बिल्कुल जी, जदों सरकार ने सानू बुला लेना सी आ जाना। ते तुसी दसो होर रवि जी, तुहाडी सेहत ठीक है हुण? हूँ ठीक है, अगे नाल बहुत फर्क पै गया है जी। चलो असी भी उस सोहने रब अगे दुआ करने कि साडे सारा परिवार दे विच जिन्हें भी साढ़े लिसनर्स ने वो सब तंदुरुस्त रहन, उन्हां नूं तत्ती वाह ना लगे। जी बिल्कुल जी, रवि जी साढ़े बहुत पुराने लिसनर ने सानू, हाँ बिल्कुल, तुसी साढ़े नाल ज्यादा ही हो गए होने हैं, साढ़े प्रोग्राम नाल तुसी जुड़े हुए हो और इसे तरह जी सानू किते किते कॉल भी करते रहने हो। अज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो? पम्मी बाई दी बोलियां सुनानी जी। शुक्रिया जी कॉल करन दे ले जी। ओके जी।

0: जी दोस्तों, तुसी सुनिए बोलियां। और वैसे जी, बोलियां दे विच ना ये जड़ी अड्डी है, ये भी थड़कन लग जाती है। और उस वेले फिर अड्डी थड़कती है जदों इदां दियां सोहणियां सोहणियां बोलियां, जदों साडे पम्मी बाई जी बोलियां पाण, फिर साडी अड्डी ना थड़के। एवें किवें हो सकदा है? लो जी, फिर चलदे हां जी कॉलर वाल। साडे दोस्त आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ये कोशिश करके पहुंचे ने साडे कोल। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: हाँ जी राम जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: देसराज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। बहुत
0: वाह जी वाह, देसराज जी ड्राइवर साहब, होर सुनाओ, हाल चाल ठीक ने?
1: बढ़िया ने जी, तुसी दसो तुहाडे की हाल ने।
0: बिल्कुल ठीक है जी। तुसी साडे प्रोग्राम च पहुंचे हो, ते प्रोग्राम किवें दा लग रहा?
1: बहुत वधिया लग रहा जी प्रोग्राम।
0: अजकल फिर छुट्टियां हुण खत्म हो गईयां कि हले चल रही हैं तुहाडियां?
1: नहीं, ये बस 2 दिन रह गए ने, 1 तरीक तक लग जाने।
0: अच्छा, फिर तां तुसी साडे प्रोग्राम जिहड़े है ओह वैसे तां पूरी रात सुणदे ही हो।
1: हाँ जी, 3 बजे सुनता जी प्रोग्राम। वधिया वधिया गीत लाया करो।
0: वधिया वधिया गीत।

जी दोस्तों, दिल वाला दुखड़ा किसी नू नहीं सुनाई दा। गल सही है जी, क्योंकि दिल वाला दुखड़ा जे तुसी किसी नू सुनाओगे ना, ते दूसरे जड़े जिन्हां नू तुसी सुनाने हो वो पता नहीं किवें तुहाडी गल नू लैंदे ने, और तुसी तां अपना दिल वाला दुखड़ा सुना रहे हो सकदा तुहाडा मजाक करन, हंसा मजाक करन। इस करके उन्हां नू सुनाओ जिहड़ा तुहाडा दिल का दुखड़ा सुन सके। लो जी, कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो हाँ जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, दरवाजा खोल दें जी, एक मिनट ठहरो। लो जी, कुंडा खोल दिता, आओ अंदर। कौन जी? ओहो, मनजीत मणि फाजिल का तो आए ने, स्वागत है जी प्रोग्राम च। मनजीत मणि जी बिलकुल आ गए ने जी, बिलकुल ठीक है जी। तुसी दसो तुहाडे हाल चाल किवें दे ने? ठीक हो, तबीयत सब सेहतां ठीक ने? ओए ये की गल हो गई, इन्हां दी कॉल ही कट गई। साडे नाल गलबात करदे करदे दरवाजा भी असी खोलिया ते मनजीत मणि जी आ भी गए, साडे नाल हले गल्लां बातां भी कर रहे सन ते गीत दसणे लगे, ते इन्हां दी कॉल डिसकनैक्ट हो गई। लो जी, फरमाइश दस गए सी, सुनाने गीत, इन्हां दे पसंद आए गीत, निमरत खैरा दी आवाज़ दे विच।

0: सोच देने के बिल्कुल भी।
1: हाँ जी, हाँ जी, सोचना
0: ते
1: चाहिए था वैसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर तुसी अज जेड़ा गीत कह रहे हो, अज वो
1: हाँ
0: गीत
1: जी,
0: भी कहिंदा कि मैं निकलना नहीं है क्योंकि ये गीत औखा करदा पिया
1: नहीं निकलता पिया।
0: है। मैं चाहता सीगा कि मैं क्या गीत तुहानू सुनाइए, मैं आ बजूब दी आवा।
1: चलो फिर सुरेंद्र कोहली का कोई होर सुना दो।
0: हाँ एवें कर लेने हैं अज।
1: ये सुना दो, जरा कहते हैं जिंदर कोले कुड़ी ने साड़ी मंगनी हो गई। चलो
0: अच्छा इदां भी हुंदा है।
1: ये तो मिल जाएगा ना,
0: चलो देखते हैं हुण जेड़ा भी मिल गया तुहानू
1: मंगनी
0: गीत।
1: तां ही होएगी जे देश तंदुरुस्त होएगा, तो क्योंकि
0: हाँ
1: सरकार ने साथ भी यही देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, गल सही है। ते तुहानू गीत सुना दिंदे हां जी, ते शुक्रिया जी कॉल करन दे लई। हुण जेड़ा गीत तुहाडे कोल आ रहा है, कृपा करके उस गीत दा आनंद माणो।
1: चलो कोई,
0: शुक्रिया जी
1: थैंक यू
0: कॉल
1: थैंक
0: करन दे लई।
1: यू थैंक यू।
0: ओके जी।

बात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुहे जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औलाद सी पर तू ना समझ सकी।

करवत पला न करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हौ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुखो काहे को मारे। ए बिरहो पिजे बोल भगत कबीर जी द्वारा उचारित ने। भगत कबीर जी दी बाणी उपदेशात्मक है। आप जी ने प्रभु नू मन अर्पित करके प्राप्त कीता सी। आप जी अनुसार अकाल पुरख प्रभु नू मिलन दे लई हिरदे विच्चों विकारां रूपी कावां नू उड़ाउणा पैंदा है। आप जी समाज विच पुरातन प्रचलित एक प्रथा नू प्रतीक बना के उस अकाल पुरख प्रभु नू

सदा दंदे ने कि हे विकार रूपी कागा उड़ जाओ, क्योंकि मेरे हिरदे घर विच प्रभु ने आना है। उड़ो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। सरवण करदे आ भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

उड़ा हो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। इस शब्द अगायन कीता सी पाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। भगत कबीर जी निम्रता दे घर विच आके अपने आप नूं अपराधी बयान करदे ने। दरअसल मनुखी बिरती है ही ऐसी, जिस प्रभु ने ए जिंद ए जान ए शरीर दिता है उस नाल तां प्रेम कीता ही नहीं, उदी भक्ति उदी साधना कीती ही नहीं। गोबिंद हम ऐसे अपराधी,

जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं साधी। सरवण करदे आ भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया।

0: गोविंद, हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ पगत नहीं साधी। इस शब्द गायन की तासी पाई सरबजीत सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगसीर सिंह।
1: राम कली बाणी भगता की, कबीर जियो एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, भवनिध तरन तारन चिंतामन, एक निमख न एह मन लाया। गोबिंद, हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिस की पाओ भगत नहीं साधी। रहाओ पर तन पर तन पर ती निंदा, पर अपवाद ना छूटै, आवा गवन होत है फुन फुन, एह प्रसंग ना टूटै, जिह घर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मो माही, दया धर्म अर गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत बछल पै हारी, कहत कबीर पीर जन रख हो, हर सेवा करो तुम्हारी। एह पावन शब्द भगत कबीर साहब जी का राग रामकली विच उचारण किया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 971 ते सु

हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़या निर्मोलक, छूट गई संसारी। इस शब्द गायन कीता सी भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आस रेख नेथ सूर देन सैल तरु फल फूल दिया सुर नर सप्त समुंदर के तारो तिर पवन जास।

0: कच्चो कंचन पयो सबद गुर सर्व ना सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पनयो लोहयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारा पाहन मानक करा ज्ञान गुर कहो बिचारा काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसया से पस परेत सुर नर पए।
1: जाम

चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणी हो शब्द हर हर जपे नाम नव निध अपे रसन ऐ नस रस है सत कर जानियो खुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख त्याइए अन्न मार्ग तजहो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदर हो द्वार हर मानी हो जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो।

मन जान निदान हर मन थरो ध्यान एनिस करो बचन गुर हृदय थर फुन गुरु जल बिमल अथाहा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाई है फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है।

गुरु गुर गुरु जप मन रे जा की सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे ते तिस गुरु बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरो प्रहलाद गुर मिरत मुन जन रे तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख है तरै एक नाम रग तजो।

सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बला शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच्छ कछ हुबरहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिए तार तज बिकार मन गय अंदर।

सो कहो टल गुरु सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जानम जानम दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बहठिया सोहिया, सब ना दावे साहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा जिस पास बहठिया सोहिया, सब ना दावे साहु,

साध चरण ना सेवे कबहु तेन सब जन्म अकथा जेन साधु चरण साध पग सेवे तेन सफलो जन्म सनाथा मोका की जदास दास।

बल जिवाहे गुर एक ओवंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौते जे सहाय वार श्री भगौते जे के पातशाह दसवें प्रथम भगौते समरका गुर नानक लय ते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां सोह साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा तखतां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आ रिया। इत देग तेग पते बिरद की पैज

पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता सहकार कराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने हवे परवानता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैदा जाए सी तां दरगह पैदा जाए सी।